पत खोई। बहले पेख पवह दिन राती, हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है। मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेव है।

प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़े

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाओ। आन दिन भगत कर है दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते।

काल जिन काली तिस घड़ी है, तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली।

जिस को तुम्हार राख्या पावे तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तें भरपूर, तू जल थल महियल।

भाव। तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना

जवान कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांठ गंगा जल गुर गोविंद नाम

प्रभाव। काल युग में है एक नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुर सेव।

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

गुरमत खोज परे तब पकरे तनसा बतरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरख।

ओडा कूप गोज खिन काढ है, जो ओडा कूप गोज खिन काढ है त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ पुन

पै बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम त्याया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रब रहया, गुर मिल नानक हर हर कहया। अष्ट सिद्ध नव निद ए, कर्म प्राप्त जिस नाम दे, प्रभ जप जप जीव है तेरे दास, गुर मिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा, घर पहला, एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जब पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया।

भय अभिमान ना जाई। लख चौरासी ही जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर जिसमाए। सगली भूले।

सहज अवल धूड़मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हांकती जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

सहेरी प्रया वचन उपहास कहो जौ सुरजन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो।

तिस अर्पौं सब सुख जाई। एक निमुख प्रैदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रह नाई। मान अभिमान हो।

ताज अभिमहान शरण संतन गहो मुक्त हो है शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिना सुख सुपने पी नाही जन नानक।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाण शब्द मरै ता सब किस सूजै अन दिन एको जाने जिसनो नदर करे सोई जन बूझै होर कह

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी तपै भगीरथ आनी जाहर नवी तपै भगीरथ।

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावै रहाउ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले।

एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवै निद पाई, उदौत भयो पूर्ण भावी को, भेटे संत सहाई, सुख

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

जिन उर धारियो हर रस कर साक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बशराक। हर के संत जना मह हर हर,

जीवना, हर जपयो हर गुरमंत, हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत, हर आपे घट घट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत, हर आपे सब रस

चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जात है सुख।

राम उरत हारं कुल है समूह सगल उदहारं बड़ भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह नहें।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जान श्री पतनाथ।

रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग उद्दम कर लागे बहु भांति उद्दम कर लागे बहु भांति बिचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूख मुंदे बंद है बहु जटुआ बिन हर

मुन जन गाव है अचल छला। गाव है गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजा

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने ओ जप।

गुर अमर गुरु श्री सत, कल जुग राखी पत, अगहन अगन देखत गात, चरण कवल जास। गुर

मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रमत जहो।

खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो विमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।

फरका नाव अत बड़ ऊंचा ऊंची हूँ ऊंचा होई अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई मुख संजम हच्छा ना हो वई कर

जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरा इक दे बुझाई सबना जिया।

मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी।

कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण को।

सिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कौन का विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद वावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख बाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पस्तार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ मल पखाहे, असंख निंदक सिर करें पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख ठाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओरक ओरक पाल थके वेद कहन इकवात। सैस अठारे कहन कतेबा अकलू इक तात, लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला है एती सुरत न पाया। नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए, समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती मालतान। कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे, अंत न सिकती कहन न अंत। अंत ना करने देन ना अंत, अंत ना देखन सुनन ना अंत। अंत ना जापे क्या मन मंत, अंत ना जापे कीता आकार। अंत ना जापे पारावार, अंत कारण के ते बिलला है ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत ना जाने को

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जो

आखे सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सके केई के जेवड पावे तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विदार ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा के तेवा मनहारे केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे गावे तोनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावे चित गुपत लिख जाने लिख लिख तरम विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदानाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अथक तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे धारे से तुदनो गावे जो तुद भावन रस्ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चित ना आवन

रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांसी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े थीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती छित्ती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक

पावन पंत परवान नदरी करम पवै निशान कछ पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिय रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाप नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की सुद कर्म खंड की बाणी जोर

ओहे मरे न ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, सिथे भगत वसे के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए, सत खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांड, जे को कथे

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगी आया बुरे आया, वाचे तर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, सोदर राग आ

गावन सुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे। गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे। गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दरनाले। गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे। गावन सुदनो जति सती संतोखी गावन सुदनो वीर करारे। गावन सुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन सुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले। गावन सुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले। गावन सुदनो जोध महाबल सूरा गावन सुदनो खानी चारे। गावन सुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते ते

तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करती फिर हुक्म न करना जाई सो पाता होता पत साहिब नानक रहन जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड़ आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदवीन सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा किसकी परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवट आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वे काट न जाए

जेवड आप तेवड तेरी दात। जिन दिन कर कह की ती रात, खसम विसारे ते समझात। नानक नाम है बाजनाथ, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम चीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आ गय कर करया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, तू के कास्त हरिया रहा। जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। उड़े उड आवे सह कोसा, पिस्ता छे बतरे चरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अस्त सिधान, ठाकुर कर कल करया। जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया।

जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ दिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक परें बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वर्ते जी तू आपे करें सोई तुझ आपे सिरज सब उपाय जी तुझ आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

आओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देवो सज्जन आशीषड़िया जो होवे साहिब त्यों मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक ते दे अवन रागा सा मैला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए हो कर राख वडाई तोए रहाओ रिसवे चस्या घड़िया पहरा सिती वारी माओवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेश राग तना श्री मैला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी राव सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारं को होए जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है रागौड़ी पूर्वी मैला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता।

मन गुरु मिल काश सवारे रहाओ। ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरु ते मने बसेरा, निज कर महल पा।

रंग पसाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

चंद सूरज दोई गुफे न देखा, सुपने सौन न थाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हों केवड आखा ना, साचा निरंकार।

रोण वाले जेतड़े सब बनने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पले जिन हृदय रहा समाए तिनका क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए। नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला। अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवनहार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार। सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सच जान। जित सेवे सुख पाई है तेरी।

रत्ता पैनन मन रत्ता सुपेदी सतदान नीली सियाही कदा करनी पैरन पैर त्यान कमर बंद संतोष।

ता अगर वास तन सास अफर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणतास।

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाम गुर सर सागर बोहे तो गुर कीरत दरियाओ जे किस पा

साथ सच मिले सच उपजे सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए नानक सच्चा।

नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला। तात मिले पुन तात कहो सुस्ति सुप्त समाए लाल गुलाल गह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोषिया हर जप एक।

प्यार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तेजद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछाणिए नदर करे मल तोए।

आओ। आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान ना जानई क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार, आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कणा पाना नाल कपूर। जे तन कंतना भावई ता सब अडंबर कूर, सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द ना पेगी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक तन

परम मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार है सच मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए श्री राग महला पहला तन जल बल माटी।

निर्मल मैला ना पिया शब्द रते पत होए। इव मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जिये रे।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेव।

तीसरे रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाये जा हर नव से मन माहे गुर मिले सुख पाये अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सार जिन खिन पर

तो प्रभ सेज पतार चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशिया अमृत पड़या अघाए नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी।

दुर्मुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवै, जे पवै दिशंतर देश, अंतर मैल ना

मिल सत संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख न पेट्यो, सो पाउ जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु

कैसी वस्त्र विसाहिए, जैसी निभ नाल अग्गे साव सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

तिन्हार गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है, खोट ना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रखिया।

पाणी मन के शान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भ समूढ़े माया पित सुतो सगल काल त्र माता तेरे हो है ना अंत सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे होए त्याय जप तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसै मद आश्रमाय बीस सप्ताह रो बासुरो संग्रे तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरम्परो चीने कह नानक इव एक तारे

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजिया इक नाम किया आधारो है भी होसी जाए।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो ज्योतिष पावे नानका हुक्म सोई।

आए। सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए। मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए। नाउ पिलाई।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंडित जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी परम दे परम परम होए खुआर, पूरब लिखिया कमावना कोई न मेटनहार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए, शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए। पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

चुप कट है परदास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे निवलाए। रहाओ हर संतो देखो नदर कर, निकट वसे पर

गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर प्याए श्री राग महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुरु पूछ करे व्यापार हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार ताई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम ते आए रहाओ हर पगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड पगत न हो वही दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया न रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे होए खुआर। तातुर बाजी पल सहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक।

ऐनस भगत करे दिन राती होमे मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए नाम निधान सत

लाग नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है अंतर सब वत होए खिन खिन नाम समालिए गुरमुख पावे कोए नाम निधान अकुट है वड पाग प्राप्त होए। मेरे मन ताज निंदा हो मैं अंकार हर जियो सदा ते आए तू।

गुर प्रसादी मन वसे हौ मैं दूर करे एहो मन तावत ता रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चानना।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

समाए। बिन गुर महल ना पाईए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो, जिद्दू पाईए सच सोए, असुर संगारे सुख वसे, जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया, ते हो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए, नानक एक

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे है ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए, सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की शरणागति हौ तिनके

पाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया, कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चे, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे,

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

गुर पाइए हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आये ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

दरबार। सतगुरु पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम समार।

माया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन अपना।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा।

नाम ते आए विण कर्मा पाया ना जाए पूरे पाग सत्संगत लहे सतगुर पेटे जिस आए अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हो मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे ले मिलाए अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए परम पुलाना अंदुला।

मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाई है, हर स्यों रह समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लाल थिया, रत्ता सह सुवाए, गुर सबदी मन मोहया, कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे, अमृत पीवे रस गुण गाए, गुरमुख एहो रंग पाए, जिसनो कृपा करे र जाए। संसार एहो संसार है, सुतिया रहन विहाए, एक अपने पाने कढ लयन, आपे लेउन मिलाए। आपे ही आप मन वसिया, माया मोह चुकाए, आप वडाई दितियन, गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है, पुलिया ले समझाए, एक आपे आप खुआयन, दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाई है।

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लह महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पव थके मन मुख बूझ न पाए।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

सैया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाणे आपना तन मन आगे दे कारवर पाया आपना हों में दूर करे नानक सोभावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे आपना हों कै

गुरमती नाम सलाही है, दूजा अवर न कोई रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द ना चीने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

नानक नाम ना विसरै सच्चे माए समाओ। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरुमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड़ ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे

ना हो जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या, कड रतन देवे प्रगास, तन वड़ पागिया जो आए मिले गुरु पास। जिना सतगुरु पुरख ना पेट्यो, से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल। सतगुरु पुरख अमृत सर वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए। श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए, मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागियो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हौ सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटि कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर ना मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा, हौं पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभु पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुरु पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुरु वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुरु पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुरु आगे ना निले ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे शोभा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोस करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मनमुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

शोषण तुझे अनित, अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत, तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात न पत, सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे दर फेर न पावे कोए, नानक रता रंग।

छत्र तार बादशाहियां विच सहते परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थां सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरंबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित कुपा।

पंजवां कड़ी मौत का पाहुना काज सवारन हारे माया काम व्यापिया समझे नहीं गवार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंधी पाहे जे हो भी पूरब लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही ने डडुरी पक्की वडन हार ले ले दात पहुत्या लावे कर तैयार जा हुआ हुकुम किसान दा ता लुन मिणिया के तार पहला पैर तंदे गया दूजे पर सोया तीजे चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै

कहत जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

सदा सदा कर चाकरी, प्रभ साहिब सच्चा सोए। साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फास, सुखदाता पै पंजनों।

उपाव स्यान सगल छड गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभु आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुरपूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम से आए।

साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थनंतर रब रहे आप।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान।

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ निर्वाण, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजने साचे के गुण सा।

पूरा सतगुरु जे मिले पाए शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरण।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए आई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए।

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कित न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

अठसठ तीरथ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल। सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार। करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार। तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर। लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर। थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान। सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट। संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू। सब चूके सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल। जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नगर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत। चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ। सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ। चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ। कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग। कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग। रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद। जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद। जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान। रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान। जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार। दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए, मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए, मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए।

तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन भुख अत अगली, कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार, परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक। सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख, मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवा। संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल। गुरपूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड अवर न कोय, दूजा थाओ ना पोस जाए गुर मेले सच सोए। रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहा समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा ले तराए। कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड। गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड, नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में मंड।

प्रभात। क्या तू रत्ता ग्रस्त हूँ सब फुल्ला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभलोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल तू।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेई रणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिनसे नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारण है, जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया।

इच्छा छुटी है जिन अंदर नाम निदान, गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान। आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाए, सच्चे से तीरतिया दरगह बैसन जाए। करते हथ वड्याइया पूरब लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक। सच्चो सच वखाणी है सच्चो बुद्ध विवेक, सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक। श्री राग महला पंजवा, गुर परमेश्वर पूजिए तन लाए प्यार, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसे पूरन हो वै काल। रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवन अवर न कोय। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार, गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार। गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास। सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा, संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए, गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम।

रहाओ। सतगुरु विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सेई नाम ते आए, नानक।

अष्टपदियां आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जा पैवाए जिसनो वाय सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए।

हुक्म न जापी केतड़ा लिख न जाने कोए जे सौ शायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए पीर पे कामर सालक साधक सौदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे सबना वेखे नजर कर जय पावे तें दे थावा नाम ना जानी है नावा केवड़ नाओ जिथे वसे मेरा पासाओ सो केवड़ है थाओ अंबड़ कोई ना सकई हो किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे वड़े हाथ वड़े आईया जय पावे ते दे हुक्म सवारे आपने चसा ना तिल करे सबको आखे बहुत बहुत लेने के विचार केवड़ दाता आखी है।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लहै सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिए का

दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत न राविया ता बिरथा जोबन जाए से जय कंत महेलड़ी सूती बूझ न पाए।

आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मन महत तू आपे देवनहार हर जियो तू करता करतार ज्यों पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ आपे सागर बोहे था आपे पार अपार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर जियो शब्द पछाणिए सांच रते गुरवाक तितन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाई है बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।

पूरे ज्यो जल सोरे मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाई है जा आपे नदर करे फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार आवन।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न।

कर ठाक न होए, नानक एको रव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदिर।

अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए। खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए। सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए। सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास। मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास। चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मोह काला पथ खोए। जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। आप पछाने कर वसे हों में तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए। श्री राग महला पहला। सुन मन फूले बावरे गुर की चरणी लाग। हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरुमत पद सावास तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाई है जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाई है निर्वाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाई है।

गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मंथन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रहा।

तुन जानिए अकथ कहावे सोए, सफल्यो बिरख हरि आवला छाव कनेरी होए, लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए। गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार, सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार। अवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार, सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार। एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए, जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए, कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए। मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ, बिन नामे तन बाद है पूलो मार गयाथ, साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ। आवे जाए पवाईए पय किरत कमाए, पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए, बिन हर नाम न छुटिए गुरमत मिले मिलाए। तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण, हौं मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान, नानक

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रल रहा, बख्शे भगत पंडार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सो

ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमत होए कपाय सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो नाथ तई, जे सतगुर पेटै सोए, ज्ञान पदार्थ पा

जग सद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हों मुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों।

देख। आखन आते केतड़े गुरबिन बूझ न होए, नाम वधाई जे मिले सत रपे पत होए, जो तुझ पावे से पले खोटा करा न कोए। गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास, अष्ट तात पाप साकी करिए।

जिन कन मन साज सुधारिया तिस सुरती निवलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंगिन अगन जलाए। हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटी कर्म कमाए। अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए। हर नाम में तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए, कंचन के कोट बत करी

सबको ऊंचा आखी है नीच ना भूसे कोई। इतने पांडे साजे है इक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाई है थुर बख्श ना मेटे कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए। अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

जिस हर गुर दर्शना होए, जो सुपने निस्फुली है जब लग निद्रा होए, क्यों सरपन के वस जीड़ा अंतर हो में डोए, गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोए, अग्न मरे जल पाई है जो बारिक दूधे माए, बिन जल कमल सोना की है बिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर रस मिले जीवा हर गुण गाए, श्री राग महला पहला, डूंगर देख डरावनो पेई अड़े डरियास, ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास, पाई रे पाव जल बिखम डराओ पूरा सतगुर रस मिले गुर तारे हर नाओ, रहाओ चला चला जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार, ही सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार, हकी कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल न चलिया खप खप मोए असार, सोना रूपा संचिए माल जाल जंजाल, सब जग में दो

नारी सेज पतार, चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिगार, केहू फेर लाइए छोड़ चले कारबार, महर मलूक कहा।

बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया। जिस यों राता तैसो हो गए सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं, अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए। हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वल्याई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए। जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत ना मेटे आ जाए, हर का पाना भगती मन्या से भगत पै दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा लिया न जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ तिन्ना पास ना बहती है ओना कर ना गिराओ कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ।

में सच समाओ। हुक्म ना जाने बपुने पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाओ दे नित नित होए कुआर। अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्चार, आए

नानक नाम वडाईया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आ

भाव सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए सदा फिर निचल पाए ना ओ मरे न जाए शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अप उजला बिन गुरु पाया न जाए पाठ पढ़े ना बूझई तेसी परम पुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चुकाया गुरमति सह सुहाए बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नो गई खाए शब्द नाम ते आये शब्द सच समाए माया फूले सिद फिरे समाग ना लगे सुभाए तीने लो व्यापत है अदक रही लपताए बिन गुरु मुक्त न पाये ना दुबदा माया जाए माया किसनो आखी है क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एहो जियो बद है हमें कर्म कमाए बिन शब्द परम न चूके ना विचो हमें जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्द हमें मारिए माया का परम जाए नाम पदार्थ पाए गुरमुख सह सुभाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हरसा लाही है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

जात गवाई, सुर नर तिनकी बाणी गावे कोई न मिटे पाई। दैत पुत्र कर्म धर्म किस संयम ना पड़े, दूजा पाव ना जाने, सतगुर पेके निर्मल हुआ अंदर नाम बखाने। एको पड़े एको नाम बूझे, दूजा अवर न जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए, सतगुर सेवे ता गत मित पाए, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सो चित लागे, आवन जान रहा है। पंडित पर पड़वाद वखाने बिन गुर परम पुलाए, लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए। जा नाव चेत।

सतगुर मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए पूरे सबद सब सोजी होई हर नामे रह समाए मन मेरे सतगुर से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यो रहना गुर कह सबद जीवत मरे गुरमुख पव जल करना वड्डे पाग नाओ पाईए गुरमुख सबद सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई इतना मनमुख सबद न पावे बंधन बंद पवाया लख राशि फिर आवे दिसा जन्म गवाया भगता मन आनंद है सच्चे सबद रंग राते अंगिन गुण गावे सब निर्मल सहजे नाम समाते गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसे मन आए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार, जम दर बदे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा, सतगुर सत दिलाया सदा सत संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजन करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई। पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट होई। सतगुर शब्द सुनाए।

रोग ग्रस्त पुतंग पलेतिया कदे हरक कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस

तीर्थ गमन करे, खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार, रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा, चित ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाया साधन संग परीत, लश्कर

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपा।

सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम वखानिए, सतगुर बाज न पायो, सब छत्ती कर्म कमाए जियो। ओं सतगुर विट्टों कुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नदर करे जे आपनी आपे लहे रलाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जा को जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड देश आजिया, अपने सेवक की तैग रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे सियानपा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरज समारिया, कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छेड़ा फल पाया, सा पाप सा सिर खसम तू, जप नानक जीवे नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सच्चो सच वर्तदा, जिस पावे किसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया, कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गोआ लिया।

मन सिंधी सो फल पाएंदा सबे काज सवारियन लायन मन की भुख जियो मैं सदिया सबो तंगड़ा गोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर समद वसाया सतगुर पुरख बिखा लिया मत्सत तरके हाथ।

ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਸਭ ਮੁਕ

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा, खत्म से ती अरदास, खत्म से ती अरदास वखाने, उर्द ध्यान लिव लागा, नामर जाद आया।

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। कीरत वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा

चोट न खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे न साके पाए भगत पै तरना पक्षे ती जावे सहल समावे।

मेरा मेरा कर पालिया वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ ना।

जिन पेवकड़े नाम संभालिया सब सफल हो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सब सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ति काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंडवर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रलै रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा लें

मुख नाम ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको जप हर

मन बासत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाप के नाथे सर्व कैसा थे जप जुए जन्म ना।

तू मिले हो, आपे ही आप मोहे हो, जस नानक आप सुनियो हो, संत प्रेम खगौरी पायरी जाए, गोविंद मन मोहया जियो, संतन के प्रसाद अगाद कंठे लग सोया जियो, हर कंठ लग सोया, दोख सब जोया, भगत लखन कर वस भये, मन सर्व सुख उठे, गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए, सखी मंगलो गाया, इच्छ पुजाया, बहुर न माया होया, कर गैली ने नानक प्रभु प्यारे, संसार सागर नहीं पोया, दखना साईं नाम अमोल।

हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हों बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सबदी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आप

राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसे नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरु का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगु सेवे है सदा सच व्यापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत न होए इहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर इक सैदा है अमर इको हर चित तार हर किस बिन कोई ना है डर परम पौ दूर कर हर किसे नो साला है जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ

आपो जे को भला कहाए नानक ता पर जापे जा पत लेखे पाए। महला दूजा जिस प्यारे सोने हो तिस आगे मर चली है त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना पौड़ी। खुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट खुद साजिया व्यापार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख सीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोई आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला कुदरत कर कै वस्या सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए सरे सरयत करें विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिद्ध कर सिजदा मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुर सभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हो कुर्बाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कबू न टूटसने हो। कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह।

मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विरसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता डरिए केत जिना नानक सच पछाण।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड पढ़ना पूर बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

ਕਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ।

आपे ही आप जाल, तू आपे जाल वताएदा आपे विच सेवाल, तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल, तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल, हर सुदों बार किच नहीं गुर सबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा। हुक्म ना जाने बहुता रोवे, अंदर तोखा नींद ना सोवे, जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई, नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा। मन मुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल, इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल, दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार,

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाए जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसे मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नान सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सत नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका शिव करे अरदास सच्चे शब्द सलाना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरुमति नाउ पाईए मन मुख मोह विनाश ज्यो पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सबना रास सब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे तिस सब किछ मिले इकना दूर है पास तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जास सब तुदे नो सलाह दे दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न ची नहीं मन मूरख गावार दूजे पाए जगत प्रबोध दा न बुझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नो आप खाए मन निर्मल होवे गुर शब्दी विचार नानक शब्द रते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार। पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर शब्दी हर पाए हर पार लगाए मन हट के न पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा नानक सो सूरावरियाम जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया गुरुमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप होवा सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया

सो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामे अगे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाणे ना चले हुकम करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख ली।

सब रती सुहागनी सतगुर कै पाए प्यार सदा रावे पिर आपना सच्चे प्रेम प्यार अस सुवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार नानक नाम सुहागनी मेली मेलनहार पौड़ी हर तेरी सब करें उसकत जिन फाफे काढ़िया हर तुदनो करें सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया हर निमाणिया तू मान हर डाडी हूँ तू डाडिया हर अंकारिया मार निवाए मनमुख मूड साध्या हर पगता दे वड्याई गरीब अनाथिया श्लोक महला तीजा सतगुर कै पाणे जो चले तिस वड्याई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसै मेट न सके कोए कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोए महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारन हार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौजल संसार सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार पौड़ी हर की पगता प्रतीत हर सब किस जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा काड़ा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा साला हो।

सो प्रभ सदा सदा गुर कै हे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे, नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन, पापियानो ना दे फिर रहन चुन नरक कोर चालियन। हर भगतानो दे प्यार कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला। कबुद डूमणी कुदया कसायन, पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या की है जा चारे गैठिया नाल। सच संजम करनी कारा नावन नाव जपेही, नानक अगे ऊतम सही जे पापा पंद न देही। महला पहला। क्या हंस क्या बगुला जा को नदर करे, जो तिस पावे नानका कागो हंस करे पौड़ी। कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। संता संग निधान अमृत चाखी है, पै पंजन मेरवान दास की राखी है। नानक हर गुण गाए अलख प्रभलाखी है। श्लोक महला तीजा। जियो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार, नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार। हौ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार, ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा। सतगुरु मिले है उल्टी भई नवनिध खर्चियो खाओ, अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसे निज खाए। अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिव लाए, नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी। हौ टाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया, हर अंदर सुनी पुकार टाडी मुख लाया। हर पुछया टाडी सद कै कित अर्थ तू आया, नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया। हर दाते हर नाम जपाया नानक पैन आया सुध।

एक स्वान कह कर गावना, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध खटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तें जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनप जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जात पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विच्यों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना। रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जम है तना, तिन आगलड़े में रह न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीथला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सत तहना परवेसं, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिसमें तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम कुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मित मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुम लाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे साका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना

तर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर जा।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसै जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया करो।

जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी, मल हो मैं बिख्या सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जात।

तिसके हों वारियां, मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन, हों सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो, जय जय देखा तें तें स्वामी, तू कट कट रविया अंतर जामी, गुरपूरे हर नाल दिखा लिया, हों सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो, एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया, सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई, किसे दीर लाइया, गुर प्रसादी इक नदरी आया, हों सतगुर विट्टो बताया जियो, जन नानक बोले अमृत बाणी, गुर सिखा कै मन प्यारी पानी, उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पर उपकारिया जियो, सत चौपदे महले चौथे के, माज महला पंजवा चौक दे कर पहला, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिल्प करे चा त्रिकी न्याई, त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो, रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर होआ देखे सारंग पानी, पांच सौ देश जहां तू वस्या, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हों कोली हों कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो, रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो, रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया, सेव करी पल चसा ना बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो, रहाओ राग माज महला पंजवा, सारुत सुहावी जित तुद समाली, सो कम सुहेला जो तेरी काली, सो रिदा सुहेला जित रिदय तू उठा, सबना के दातारा जियो, तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौ निद तेरे अखुट पंडारा, जिस तू दे सो त्रिपत अघावे, सोई भगत तुम्हारा जियो, सबको आसे तेरी बैठा, कट कट अंतर तू है उठा, सबे सांझी वाल सदाइन, तू किसे न दिसे बहरा जियो, तू आपे गुरमुख मुक्त कराए, तू आपे मनमुख जन्म पवाए, नानक दास तेरे बलिहार है, सब तेरा खेल दसहरा जियो, माज महला पंजवा, अनहद वाजे सहज सुहेला, सबद आनंद करे सद केला, सहज गुफा में

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथा।

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहुविध तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसा।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु।

जंत सगले प्रत पारे मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरुमुख नानक तिसै अरादे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तांबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीत लाया गुरपुर।

भगत जीवें गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कह सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन पारो तुमरी कृपा ते हुए परगाता सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई।

सर्व जिया को देवन हारा, गुरु प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो, मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख पंजन, रते रंग रसाली जियो, माज महला पंजवा, मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई, कार कमावा जे तुझ पावा, जा तू दे दयाला जियो, प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे बेकुंठ सिथाई, तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ

सांत पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आते बख्श करे जी सारा। अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जां की शरण पया गत पाये, साथ साथ हर नाम ते आये। तिस दिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे त्रव तुठे। गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंकर। सो रस सोई जाने जियो, अगम अगोचर साहिब मेरा। कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता। को विरला आप पछाने जियो, प्रभ मिलने की ए निशानी। मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से। आनंद खसम कह पाने जियो, हथी दिखी प्रभ देवन हारे। जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने। हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई। गुर के चरण वसे मन माही। अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाण किछु न जापे। अपने संतानो आप सहाये, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो। सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है। सो रिदा सुहेला जित भर गुण गाई है। सा तर्क सुहावी जित वसे, हर जन सच्चे नाम वितों कुर्बानो जियो। सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई। त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो। सच सालाहन बड़ पाजी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है। रंग रते तेरे तुद पावे, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई। नानक सच त्या

मेला जप अमृत नाम संत संग मेला करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो सिमरत नाम दोख सब लाके अंतर बाहर हर प्रव साथे तै पाओ परम खोया गुरपुर देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौ निज नाम परे पंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला देह दान ना।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेविया तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत विण होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोवे।

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्त उदासा जियो। माद महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन मैं थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राए, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन जीठा जियो। तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू

सेवा सुरत सबद चित लाए, हों मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हों वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया, गुरमति प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंगन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, अंगिन सदा रहे रंग राता, दर्श कै सोजी पावणिया। पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवन जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हो मैं मेरा ठाक रहाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। हों मैं मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तू दैताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई, नानक नाम त्याए सदा तू, जम्मन मरण सवारणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, दिल तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख हो वै तोई बूझे, गुण कह गुणी समावणिया। हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया, जो सच लागे से अंगन जागे, दर्श कै शोभा पावणिया। रहाओ आप सुने ते आपे वेखे, जिसनो नजर करे सोई जन लेखे, आपे लाए ले सो लागे, गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए, पूरब लिखिया सो मेकना ना जाए, जिन सतगुर मिलिया से बड पागी, पूरे कर्म मिलावणिया। तेई अड़े तन अंगन सुती, कंक विसारी अवगण मुती, अंगन सदा फिरे बिल लादी, बिन फिर नींद न पावणिया। तेई अड़े सुखदाता जाता, हों मैं मार गुर शब्द पछाता, सेज सुहावी सदा फिर रावे, सत सिगार बनावणिया। लख चौरासी जी उपाए, जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए, किल बिख कार सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावणिया। लेखा मांगे ताकिन दिए, सुख नाही फुन दूए तीए, आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तैं आप कराए, पूरे गुर कै शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वडियाई, आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा, इको आप फिरे परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। हों वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया, गुरमति मन इकट कर आया, सच्चे रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया, इक विसार दूजे लोभाया, अन दिन सदा फिरे परम पूला, दिन नावे दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म बिदाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वडियाई, हर कै नाम समावणिया। माया मोह हर चेते नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किछ नजर ना आवे, मन मुख पाप पचावणिया। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवणिया। अन दिन राते जो हर पाए, मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावे सच वखाणे, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणिया। माज महला तीजा, शब्द मरे सो मोआ जापे,
काल ना चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल ज्योत समानी सुन मन सच समावने आ हौ वारी जियो वारी हर के नाए शोभा पावने आ सतगुर सेव सत चित लाया गुरमती सहज समावने आ रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल ना पाए।

ते सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावनिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावनिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावनिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावनिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावनिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावनिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावनिया होवारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावनिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावनिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावनिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावनिया वे परवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावनिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सबदे मार जीवावनिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद ऐ सेवी तैं तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावनिया मैं होर न कोई तुदै जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सह समावनिया तुद जेवड मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावनिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगन हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याय सहजे सच समावनिया हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावनिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावनिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे शुद्ध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावनिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावनिया एकम एक आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविद माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावनिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावनिया सच्चे बाजों को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावनिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तार देखे कच्ची पक्की सारी अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावनिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावनिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावनिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावनिया सतगुर है अमृत हर साचा मन नावे मैल चुकावनिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुझ सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावनिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर के शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावनिया।
रतन पदार्थ पलर त्याग है, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुखने सुख न पावण्या, अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, तै मार परम चुकावण्या, परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावण्या, सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावण्या, आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावण्या, माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावण्या, हों वारी जियो वारी निरपौ मन वसावण्या, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल सब तरावण्या, रहाओ मन मुख मुग्ध करे चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावण्या, मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बूझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावण्या, सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधिन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावण्या, रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावण्या, जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर के शब्द सहजे सुख समावे, हों बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावण्या, सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे का सत मनावण्या, जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावण्या, माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जी ओ सफल्यो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावण्या, हौ वारी जियो वारी सत्संगत मेल मिलावण्या, हर सत्संगत आपे मेल है, गुर शब्दी हर गुण गावण्या, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावण्या, बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावण्या, एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावण्या, बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावण्या, गुरमुख होवे सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावण्या, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावण्या, सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावण्या, माज महला तीजा, आप बंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावण्या, हौ वारी जियो वारी हर गुण अंदिन गावण्या, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवण्या, रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावण्या, पाओ पोजन सतगुरु तुथे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावण्या।
सतगुर ना सेवै मूरख अंध गवारा, फिर ओए किथों पाएन मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। शब्द साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिध नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलानी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भक्ति पाई है, सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे ते हा फल पाए, सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हौ मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौ मैं ममता सबदे खोवे, अंधिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम विद पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर ना जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुरु मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उर्धारे, सच रते सदा बैरागी, हौ मैं मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके, चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुरते सांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मर मर जमे, निगुरे आवन जावणिया। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किछ पाया, शब्द भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया।
सच्चा साओ सच्चे बन जा रे, सच बनन जय गुर हेत अपारे, सच विहा जय सच कमावे, सचो सच कमावण्या। बिन राशि को वत क्यों पाए, मन मुख पूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावण्या। एक सच बनन जय गुर शब्द प्यारे, आप करें सगले कुल पारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावण्या। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मन मुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे, मन मुख परम कुलावण्या। आपे देवे शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे सुन सुन त्यावण्या। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कह पाए पावण्या। हों वारी जियो वारी आप निवारण्या, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यो सह समावण्या। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाईए नाही, सबदे मेल मिलावण्या। गुरमुख अलिपत रहे संसारे, गुर के तकिए नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावण्या। मनमुख अंधे शुद्ध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावण्या। एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जे ही वासना पाए ते ही वरते, वासु वास जनावण्या। मन मुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर सांत न पावण्या। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुक्म पछाणे, जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावण्या। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लय सो निर्मल होई, नानक नाम वसे कट अंतर, जिस देवे सो पावण्या। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावण्या। हौ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावण्या, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवण्या। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आख सुनावण्या। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावण्या। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावण्या। अजब कम करते हर केरे, क्यों मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी क्यों चित लाए, अमृत शब्द बजावण्या। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावण्या। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत पियावण्या। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख लै जावण्या। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावण्या। हौ वारी जियो वारी गुरमुख अमृत पियावण्या, रसना रस चाक सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावण्या। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावण्या। सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावण्या। गुरमुख तत है बिचारा,
अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा से पावनिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोह, अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सह सुनावनिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विष्टा में वासा, बिन सेवा जन्म गवावनिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवनिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन सिरजी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावनिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सब सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावनिया। हो वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्यायन से सच राते, सच्चे सच समावनिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दीठी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चले, निज कर वासा पावनिया। गुर के शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावनिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाले सेवड़ पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावनिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावनिया। पर परखा के सांत ना आई, तृष्णा जाले शुद्ध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बिख खावनिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरत है, मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावनिया। हो वारी जियो वारी राम नाम मन वसावनिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावनिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति जोत मिलावनिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावनिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे

गुर के सबद सद रहे समाए, सच सलाही सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के सबद रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हौ वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, हों मैं मैल गुर सबदे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे सोबा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो सबदे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुभाए, गुर कह पै उजल हौ मैं मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, सबदे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरुमुख भगत साए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर के शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत न पाए कोई, नानक नाम गुरु पगत।

सुखदाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया। औ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावणिया। जो हर सेवै थे सदा सोहै शोभा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे मन पाए। सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया। सबको सके हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा। जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया। इक्कस क्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निद नाम वखरा मन आए। पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता। तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुझ सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक स्यों मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है साचे ठाकुर वे परवाहे। नानक नाम वसै।

तेरे भगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

सोए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख विहावणिया लिख दिया कागज मस्त होई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हो मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हो वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पारे लाए पूरे पाग गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवे ता किछ पाए गुर प्रसादी हर मन वसाए सदा मुक्त हर मन वसाए सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए देसंतर पवे दूजे पाए खुआए बिरथा जन्म गवाया कपटी बिन शब्द दुख पावणिया तावत राखे ठाक रहाए गुर प्रसादी परम पद पाए सतगुर आपे मेल मिलाए मिल प्रीतम सुख पावणिया एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए आप डूबे सगले कुल डूबे कूड़ बोल बिखावणिया इस तन में मन को गुरमुख देखे पाले पगत जा हो मैं सोखे सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए तिन भी तन में मन ना दिखावणिया आप कराए करता सोई होर के करे कीते क्या होई नानक जिस नाम देवे सो लेवे नामो मन वसावणिया माज महला तीजा इस गुफा में अकुट पंडारा तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा आपे गुपत प्रगट है आपे गुर शब्दी आप मुझावणिया हो वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महा रस मीठा गुरमती अमृत पियावणिया रहाओ हो मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्द नाम न पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मान्या हर दर शोभा पावणिया शरीरों पालन को बाहर जाए नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए मनमुख अंधे सूजे नाही फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखे हो में मैल जाए बैस सुतान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समावणिया नौ दरखा के तावत रहाए दसवें निज करवासा पाए ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर आनेरा ना वसल है ना चूके फेरा सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही गुर पूरे पाग मिलावणिया गुप्त प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हौमे मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हो वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया
गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से ती चित लावण्या रहाओ। गुरमुख जीवे मरे प्रवाण आरजा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच्चों आप गवाए आप करे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अन दिन सब दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा जम काल गरठे करे पुकारा। अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठा आप आए नानक नाम मिले वड्याए पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सबद दिखाए सतगुर पूरा। आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावण्या। हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावण्या। बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावण्या। रहाओ तू आपे सो है आपे जग मोह है तू आपे नदरी जगत परोवे तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावण्या। आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावण्या। आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावण्या। आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया आपे गुण गाता गुण गावे आपे आप सुनावण्या। आपे करे कराए आपे आपे थाप उठापे आपे तुझते बाहर कछु न होवे तू आपे कारे लावण्या। आपे मारे आप जीवाए आपे मेले मेल मिलाए सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सह समावण्या। आपे ऊंचा ऊंचो होई जिस आप विखाले सो वेखे कोई नानक नाम वसै कट अंतर आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया।

नहीं पाया जाए, कृपा करे सा सतगुरु पेट है नदरी मेल मिलावणिया। दूजे पाए पड़े नहीं बूझे, त्रिविद माया कारण लूजे, त्रिविद बंधन टूटे गुर शब्दी, गुर शब्दी मुक्त करावणिया। यो मन चंचल वस ना आवे, दुबदा लागे दे दिस्तावे, बिकता की

संगत होई आस करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर वस चक साध पावणिया हर वस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूजे चौथे कद लिवलावणिया हौ वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर्ष्यों चित लाए हर दर मैली सो बा पावणिया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत खास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन

फिर सहज रहे रंग राती सबद सिंगार बनावणिया। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया। एक रव रहा कट अंतर, मिल सतसंगत हर गुण गावणिया। सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया। मन मुख नाम चितना आवे, बिन नावे बहु दुख पावणिया। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने। नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथा।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवण जावण्या। आपसे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावण्या। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

सो बत्ता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन ने कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे, ए बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अक्षर जित ताओत रहता।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तारत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी गुरुमुख मन तन पावनिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावनिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार ब्रह्म।

चाड़े कर कृपा दास नगर निहाले गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आप समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

तू साहिब सरण सुखदाता सत्संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अठाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तो सा हर का नाम।

ए प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

जा। हर जप जपे मन फीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए तै दूरे। शर्म आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे चूरे। चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे। पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे। सब छड़ाई खसम आप हर जप पई थरूरे। करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

जल बिन साफ कुमलावती, उपजे नाही दाम हर ना न मिलिए साजने, कत पाये विश्राम जित कर हर कंस न प्रगटे, पत नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

वैसाख सुहावा तां लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गे सब निवन। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है।

प्राणन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे।

पास तब खुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल च्यो प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल च्यो प्यार मन तंग रत्ता।